रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाइया, सिद्धा पुरखा किया वड्याइया। तुद बिन सिद्धि किनै न पाइया, कर्म मिलै नाहीं ठाकर हाइया।

सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सुवारन हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाऊं, आखने औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलियह दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाए। रहाओ साचे नाम की तिल वडियाई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे।

हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नान।

तिस पाछे बचरे छरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल।

वह जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्या वह हर त्या वह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिनका भाओ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनिक अनिक।

पढ़ै बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरखे अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ा वरना कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निश्चल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करहै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सच्यार मैडा साई, जो तो भावै सोई थीसी। जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया। जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुदे आप विचो।

मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाउ। जप तप संज

करम्मा शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कब्यो बाज बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबू, आप हाथ दै मुहे बचावो।

ठाकुर भजन की रह प्यासा। तुम्हें चाड़ कोई अवर न त्याहूं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उवरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्चा, श्री अस तुझू करे हो रच्छा। राख लिहो मुहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन

तहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदंते कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार किस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पहचानत, चीटी ते कुंचर असतुला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब हीते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निरपकार निर्लंब, आद नील अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव कहो कैत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए अचम पाव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता, जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहरे हो, ताके ताप तनक मह हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्मु सब होई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई।

दुष्ट दोख ते लेहु बचाई। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहु उबारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहु बचाई। सुवैया

अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तुहे बखान्यो। दोहरा सग

0: चौथा पंच पदा आचार चरै ता सिद्ध हुई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सार लागे तन पीतर, ता भ्रम काटिया जाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नाय खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो, हम बारक तुमरे तारे। तन तन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन पवित्र ते लाहे दरबार दियां हाजरियां भर के, लाहे बण दे कीर्तन ते कथा ते पाठ साहिब भर के, साहिबां दी बख्शां लै रही परम सरकार जो सत्संग जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी उठ पागे हो जो अरदास तो उपरंत आप जी ने बड़ा सुंदर हुक्मनामा सरगुण किया है, गुरु कृपा करे सानू उस दे उपदेश दे चरण दी समत बख्शे। हुण सूचनावां जी, पहली ते है जो नॉर्थ साउथ हाल दी बिल्डिंगां बन रही ने, उस वास्ते रिस्पॉन्ड कढ़न लई बेनती है। जे अगे आप जी ने रिस्पॉन्ड कढ़िया होर कढ़ना चाहुंदे हो तो बहुत चंगी गल होवेगी, ते जिन्हां ने नहीं हले उस पासे ध्यान दिता उन्हां नूं बेनती है जरूर कृपा करो। सबदे भरे सहज पाठ करना च रखे गए ने, जिन्हां ने हाले रखने ने वह गुरु की बख्श लैण, अरदास करके आरंभ कर देण जी, ते आप जी नूं दस्या जाएगा कदों भोग पाउणे ने। खालसा स्कूल का दाखला शुरू है जी, 31 तक जिहड़े इंटरनेट ते जाके अपने बच्चों नूं दाखिल करा देणगे वह ऑनलाइन से उन्हां नूं 100 डॉलर घट देना पएगा फीस का, तो इस करके कोशिश करो उस तो पहला पहला आप जी इंटरनेट पर जाके अपने बच्चे या बच्ची का दाखला भर दिओ जी। 2 अगस्त को साढ़े पास भाव आउंदे ऐतवार आ रहे हैं, भाई शाह भाई भुपिंदर सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहब से अमृतसर, उन्होंने कीर्तन का समा नोट कर लो जी, दोपहर में 11:30 तो 12:30 होगा जी। 7 अगस्त को है प्रकाश धन धन गुरु हरकृष्ण साहब जी का, 8वीं पातशाह जी का। 8 अगस्त को है मोर्चा गुरु का बाग का इतिहासिक दिन। 7, 8, 9 को साढ़े पास आ रहे हैं संत रणजीत सिंह जी टंडरियां वाले, 3 दिन का गुरमत समागम है उन्होंने रखा इतने सैनिक गुरु घर विखे। 7 ते 8 तरीक शामा के दीवाना के समा लाता है 6 से 9 3 घंटे का, तो ऐतवार उन्होंने समा है 11 से 2 9 अगस्त का। 17 तरीक संगरांद हैगी है जी, 22 अगस्त को सिख हेरीटेज नाइट मनाई जा रही है अर्थक्वेक की गेम दे 7:30 शाम को, टिकटा ला के परिवार समेत जाने की कृपा करनी, बाकी सूचनावां काफ़ी छड जानियां। 31 राग दरबार की गल कर लवां, 31 राग दरबार सितंबर के 11, 12, 13 नूं हो रहा जी, ते थोड़ा पिछे आवां तो 7 सितंबर नूं है लेबर डे। हुण पहला कीर्तन करनगे भाई साहिब भाई इशपाल सिंह जी, तो उन्हां दा कीर्तन जथा 7 बजे तक, 7 से 8:15 कथा करनगे भाई साहिब भाई रमेश सिंह जी, फिर दूसरा कीर्तन करनगे भाई शाह भाई प्रतपाल सिंह जी रसीला जी, 8:30 बजे तक दीवान चढ़नगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

समाज रहा है ठीक सत्वे तक सत्कार्यो पाए सह पाए गुरुदेव सिंह जी हरिजन वाले उन्हों पासो सौद कीर्तन श्रवण करी जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।

की कथा नाम सुनत दर्द दुख लत्ता नाम की महिमा संत ऋतवसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संगवड भागी पाई संत की सेवा नाम ते आई नाम तुल कछवर न हुए नानक गुरमुख नाम पावै जन को श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल वस्तपति जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत विख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुण्य दान होमें बहु रतना शरीर कटाए होमें कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदास पीसर थीवे अगन मारे होमत पुराण कनिकसु हैवर भूमदान न्यौली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजमत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तो पीओ मैं मैल न जावे हर के नाम संसर कछ नाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि मन कामना तीर दे छुटे गर्व गुमान न मन ते उठे सोच करे दिन सरात मन की मैं न तन थे जात इस देही कौ बहु साधना करे मन ते कबू न बिखिया टरे जल तो वह बहुदे अनीत शुद्ध काओ एकाची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच बहुत सियान जम का पौ व्यापै अनिक जतन कर त्रिसन नात्रा पै पेख अनेक अग्नि बुझै कोट पाव दरगह नहीं सिजै झूठ सुनाही उपयाल मुह व्यापै माया जाल अवर करतू सगली जम डान गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जप दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साधना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संगे होमे छूरे जे को जन्म मरण ते डरे साधना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साथ संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गणिये सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल किरीना हर हर नाम जिन कट कट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन समृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्धन को धन तेरो नाओ निथावे को नाओ तेरा थाओ निमाने कौ प्रभ तेरु मान सगल कटा कौ दे बहुदान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जन हुआ पे अपन संगा प्रवराते तुमरी उस्त तुम ते होए नान कवर न जान सोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सासंग दुर्मत मल हिरया सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जसन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जिह घट वसै हर नाम श्लोक निर्गुण यार एआनिया सो प्रभ सदा संभाल जिन किया तिस चीत रख नानक निभही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तो सासवार सीगारिया गर्भ अगन मह जिने उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद पयाऊ पर साक्षैन मुख पयाऊ बैठ कौ दैन
ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨ ਬੂਜੈ ਬਖਸ਼ ਲੇ ਹੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਾਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸੈ ਸੁਤ ਪ੍ਰਾਤ ਮਿਤ ਬਣਤਾ ਸੰਘਸੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵਹਿ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵ ਕਮੁਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਵਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਸਾਤ ਬਸਾ ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰ ਨਿਤ ਰਸਨਾ ਤਿਸੈ ਤਿਆਗਵਰ ਸੰਗਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੁੜੰਦ ਬਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੁ ਪ੍ਰਵਿਆਪੇ ਆਦੰਤ ਜੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਤਿਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ ਜਾਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵਨਿਤ ਪਾਵੈ ਤਾਸਿਓ ਮੂੜਾ ਮਨ ਹਿਲਾਵੈ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ ਜਾਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਤਿਸੈ ਵਿਸਾਰੈ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ਸਦਾ ਸਦੈ ਭੂਲਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆ ਕੌਡੀ ਸੰਗਰਚੈ ਸਾ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੈ ਜੋ ਹੋਵਣ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ ਗਰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨ ਸੁਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਭੇਕ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਛਪਸ ਨਾਹੀਂ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸਵਾਲ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆਹਾ ਗਲ ਪਾਤਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹ ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿ ਸਮਾਤ ਸੁਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰ ਗੈ ਲੇਹੋ ਓੜ ਨਿਭਾਵੈ ਕਹਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ ਨਿਸਕਹੀਐ ਤੂੰ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ ਕਹ ਬਿਸ਼ਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਾਉ ਭੀ ਸੁਰ ਭੰਗ ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਆ ਉਸ ਗਵਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੈ ਨ ਚੀਤ ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਤਾ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲੁਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਬਸੈ ਅਣਤ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਮਾਨੈ ਮਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹ ਆਹੋ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਅਗਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ ਲਾਗੈ ਆਨੁ ਸੁਆਏ ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਜਈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ ਅਸਪਦੀ ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ ਦਸ ਭੀ ਹਿਰਲੇ ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹ ਕਰੇ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾ ਕਹੁ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਅਗਣਤ ਸਾਹੂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈਣ ਦੋਲਾਸ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਚ ਬਹੁਰ ਸਾਹੂ ਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੂਸ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਪ ਹੀ ਖੂਵੈ ਬਹੁਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤਿ ਸਿਆ ਗੈ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ਉਸਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਸਰਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ ਬਿਰਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਓ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਉਹ ਬਿਨ ਸਹਿ ਮਨ ਪੁਛਤਾਵੈ
जो दिसै सो चालन हार, लपट रहु तै अंध अंधार, बटाऊ सो जो लावै नेहि, ताको हाथ न आवै के, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई, मिथ्या तन तन कुटम सबाया, मिथ्या होमै ममता माया, मिथ्या राजोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध बिकराल, मिथ्या रथ हस्ती अशुभ वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता, मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान, मिथ्या पशु पर कर्तुभमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है, मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है, मिथ्या तन ही पर उपकारा, मिथ्या दास लेत विकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भय, सफल देह नानक हर हर नाम लय, बिरथी साकत की यार जाओ, साच बिना कहूवत सूचा, बिरता नाम बिना तन अंध, मुकावता कै दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरता बिहाए, मेघ बिना ज्यो खेती जाए, गोविंद भजन बिन बृथे सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम, तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ, रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नि प्रीत मुखो गंडलावत, जानन हार प्रभु परवीन, बाहर भेख न काहू पीन, अवर उपदेशय आप न करे, आवत जावत जन्मै मरे, जिसके अंतर बसै निरंकार, जिसकी सीख तरै संसार, जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता, करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप माने, अपहै आप करत नबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नीरा, उपाव सियान सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत, जिस भाव तिसले लड़ लाए, तान तनंतर रहा समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी, श्लोक काम क्रोध यार लोप मोह, बिनस जाए अहंगमेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव, अष्टपदी जे प्रसाद छत्ति अमृत खाए, तिस ठाकुर कौ रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंध तन लावै, तिसको सिमरत परम गत पावै, जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसै तिहाई सदा मन अंदर, जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा तिहाई ध्यावन जोग, जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है, तिसै त्या कतबर लुभाव है, जे प्रसाद सुख से सुविजय, मन आठ पहर ताका जस गावीजय, जे प्रसाद तु सब को मान, मुक्ता को जस रसन बखान, जे प्रसाद तिरु रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जप दरगै मान पावै, नानक पत सेती घर जावै, जे प्रसाद आरो कंचन देही, लिव लावो तिस राम सनेही, जे प्रसाद तिरौला रहत, मन सुख पाव है, हारो हर जस कहत, जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै, जे प्रसाद तुझको ना पहुँचे, मन साथ साथ सिमरहु प्रभु उच्चे, जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ताकी भगत करे, जे प्रसाद भूखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों वालस की जय, जे प्रसाद अश्वहस्त सवारी, मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी, जे प्रसाद बाग मिलक तना, राग प्रोय प्रभु अपने मना, जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठ सत्य सहत्याई, सहत्याई जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रख है,
जे प्रसाद करै पुन बहुदानु मन आठ पैर कर तिसका ध्यानु जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सासा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमर हो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै जे प्रसाद सुनै करण नाद जे प्रसाद पेखै बिस्माद जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सहज समावै सब प्रभु त्यागवर कतला गो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तूता कौ जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पाव है साच रे मन मेरे तूता स्योराच जे प्रसाद सब की गत हुए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मतूतम होए सर्व निदान प्रभु तेरी मया पू कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक किन कह कछु नहात श्लोक अगम अगाद पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुन बीता नानक बिनवंता साजना किए चर्ज कथा अष्टपदी साधक संग मुखो जल होत साध संग मन सगली खोत साधक संग मिटै अभिमान साधक संग प्रगटै सुगयान साधक संग बुझै प्रभनीरा साध संग सब होत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक उपर जतन साध की महिमा बरनै कौन पुरानी नानक साध की शोभा प्रभु माही समानी साधक संग अगोचर मिलै साधक संग सदा प्रफुल्लै साधक संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होय सब की रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतहु तावै साध संग स्थित मन पावै साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साधक संग न बीगा पैर साधक संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही हों ताप साधक संग तजै सव्याप आपे जान साध बड़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कबहू तावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग दस्त गोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साधक संग वसै थानु चै साधु कै संग महल पहुँचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधानु नानक साधु कै कुर्बानु साधक संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै साधु कै

पूरण पूर है दयाल, सब ऊपर होवत कृपालु, अपने कर्तव्य जान आपो, अंतर जामी रहो व्यापो, प्रतपालय जीअन बपात, जो जो रचियो सो तिसै त्यात, जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर की गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, करनहा नानक इक जानिया, जन लागा हरि कै नाए, तिसकी आसन बिरथी जाए, सेवक को सेवा बन आई, हुकम बूझ परम पद पाई, इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार, बंधन तोर भय निर्वैर, अंदिन पूजै गुर के पैर, हे लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपै मेले, साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभु परमानंद, राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देह का करो उधार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुवाओ, आठ पहर प्रपेखो नेरा, मिटै ज्ञान विनसै अंधेरा, सुनो उपदेश हृदय बसावहु, मन इच्छे नानक फल पावो, हालत पलत दोए लेहो सुवार, राम नाम अंतर उतार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै ते साच परीखिया, मंत्र नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निब है केप तुम्हारी, एक काटेक रखो मन माही, नानक बाहर नया वह जाहे, तिस्ते दूर कहा को जाए, उबरह राखन हार त्याए, निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोई न पहुंचन हार, सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमर जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सुहोत निहाल, ताकै निकट नयावत काल, अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया, श्लोक ज्ञानंजन गुरदिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगास, अष्टपदी संत संगंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समग्री एक सुकट माही, अनिक रंग नाना दृष्टाही, नौ निद अमृत प्रभ का नाम, देही महेश का विश्राम, सुन समाद अनहत तैनात, कह न जाई अचर्ज विस्माद, तिन देखे आज से आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत, तरण माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल, बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंट दाह दिशे समाहे, तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ, वेद प्राण सिमृत मैं देख, ससियर सूर नखियत्र महेक, बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कब हूं डोले, सर्व कला करके लेकेल, बोल न पाइये गुने अमोल, सर्व ज्योत में जाकी ज्योत,
ਧਾਰ ਰਿਹੋ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਹਿ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਣੈ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ, ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਏ ਰਹਿਤ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ, ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ, ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਭੀਓਹੀ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ, ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ, ਅਨਿਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ, ਅੰਤਰ ਗਜ ਸੇ ਆਪ ਜਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਸਰਭੂਤ ਆਵਰ ਤਾਰਾ, ਸਰਬ ਨੈਨਾ ਪੇਖਨ ਹਾਰਾ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ, ਆਪਣ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਨਾ, ਆਵਣ ਜਾਨੇ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਸਭ ਕੈ ਮਦ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੁਆਪੇ ਕਹੈ, ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਸਮਾਏ, ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਨਾਹੀ ਬੁਰਾ, ਓਰੈ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਛ ਕਰਾ, ਆਪ ਭਲਾ ਕਰ ਤੂੰ ਤਤ ਨਿੱਕੀ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਆਪ ਸਾਚ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ, ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਣ ਸੰਗਰਾਜ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪਰਵਾਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਕਿਉ ਜਾਣ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਉਹ ਤਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ, ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾਈ ਹੈ ਸੋ ਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ

पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेक। साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस अनित त्याग तरंग, संत जना की धूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करहो, साथ संग अगन सागर तरहो। हर तन के पर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेव कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उदारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित चित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमली कलाले रतन। सुनत कमावत होत उदार, आप तरह लोक कह निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जा कह मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहत वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महांत कह माथे, नानक उदरे तिन कह साथे। शरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभाव मिलाई। मिट गए बैर भय सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन। सुख प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण हुई सेव की सेव। आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रवतारी, नानक निभि खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सुहोत निदान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब त्यु छुपाए स्थान, बवन न होवै आवन जान। हर धन खाट चलै जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए। खेम सांत रित नव नित, बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध। विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगा, सब कह मत सगल ते उदा। सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता। ए फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम वचन मन सुने। एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग में ताकि गत होए। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमृत शास्त्र वेद वकानी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जाकै मस्त कर्म प्रपाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रवचीत। जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ दे तत्काल उधारै। निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माहि समानी।

मुख सरम पत चोली ध्यान की करह बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता है जाग जीत आदेश तिसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वज है नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चला वह लिखे आवह भाग आदेश तिसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबाण जिव तिस भावै तिव चलावै जिव होवै फुरमाण वो वेखै ओ ना नदर न आवै बहुता एहो वेडाण आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बहु लख होहे लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़ियां चढ़िया होए अकीस सुन गला आकाश कीता आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देण ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर जोर ना श्रुति ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोय राती रुती तिथि वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवाण नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आख हो कर्म केते पावन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट घड़िया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद।

अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कूड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप ताकियां गलां कथियां न जाहे जे को कहै पिछै पशुताए तिथे घड़िए सूरत मत मान बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोद महाबल सूर तिन में राम रहया भर पूर तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना उहे मरह न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथे भगत वसा है केलो करह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथ है ता अंत ना अंत।

जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल कड़ी है शब्द सची।

हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा एहो आसमाओ। शब्द से ती मन मिलिया सचै लाया पाहो, आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझा आए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। सेव साकत आप उपाय कह, करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसे बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुकत शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै, एक स्यों लिव लाए। कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, ततै सार न जानी। ततै सार न जानी गुरु बाजो ततै सार न जानी। तिही गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रैण विहानी। गुर किरपा ते से जन जागे, जिना हर मन वसया। बोलह अमृत बाणी, कह नानक सो तत पाए। जिसनु अन दिन हर लिव लागै, जागत रैण विहानी। माता के उधर मैं प्रतपाल करे, सो क्यों मनहो विसारिय। मनहो क्यों विसारिय ए वडदाता, जे अगन मैं आहार पहुँचावै। उस नो के हो पोहे न सकी, जे सुनाओ अपनी लिव लावै। अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभाली है। कहे नानक ए वडदाता, सो क्यों मनहो विसारिय। जैसी अगन उधर मैं, तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जेही, करता खेल रचाया। जात इस भाणा ता जम्या, परवार भला पाया। लिव छुड़ की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाउ दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी, जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है, मुल न पाया जाए। मुल न पाया जाए किसै विटहो, रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै, तिसनु सिर सौंपीऐ। विचों आप जाए जिसदा जियो, तिस मिल रहै हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है, भाग तिना के नानका, जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन वण जारा, हर रास मेरी मन वण जारा। सतगुरु ते रास जानी, हर हर नित जपे हो जी हो, लाहा खटे हो दिहाड़ी। एहो धन तिना मिलिया, जिन हर आपे पाणा। कहे नानक हर रास मेरी, मन हो आवण जारा। ए रसना तू अन रास राच रही, तेरी प्यास ना जाए। प्यास ना जाए होरत कितै, जिचर हर रस पलै ना पाए। हर रस पाए पल्लै, पिए हर रस, बहुड़ न तृष्णा लागै आए। एहो हर रस करमी पाईऐ, सतगुर मिलै जिस आए। कहे नानक होर अन रस सब विसरे, जां हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया, हर तुम मैं जोत रखी, तातू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच, तातू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया। गुरप्रसादी बुझिया ता चलत हुआ, चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी, गृहो मंदर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापए। गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना पिर जापए। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कहे नानक प्रभ आप मिलिया, करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए कह, क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया। जिन हार तेरा रचन रचिया, सो हार मन ना वसाया। गुरप्रसादी हार मन वसया, पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सत गुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मैं ज्योत धरी। हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। ए विश संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदर ही आया। गुरप्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एको है, हर बिन अवर न कोई। कहे नानक ए नेत्र आंद से, सतगुर मिले दिव दृष्ट होई।

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे चरण कमल आत्म आधार एक निहार आज्ञाकार एको बणज एको व्यवहारी अवर न जाने बिन रंग निरंकारी हरख सोग दोहूते मुक्ते सदा अलिपत जोग अर जुगते दिस सब मैं सब तेरे ते पार ब्रह्म का ओए तिहान तरते संतन की महिमा कौन बखानो अगाध बोध केश मेत नहीं जानो पार ब्रह्म हुए कृपा की जय तूर संतन की नानक दी जय गरीब निवाज अपनी चरण धूड़ बख्शिश कर दियो स्मरंत संत सर्वत्र रमन उन्हां दी अवस्था कैसी हुंदी है श्री मान भाई गुरुदास साहब जी ने एक बित बड़ा प्यारा लिखिया कहिंदे बांछे ना स्वर्ग वास स्वर्ग जान दी इच्छा नहीं रखते मन है ना नरक त्रास ते नरक जान दा डर नहीं मनदे आपां कहिंदे स्वर्ग मिल जावे स्वर्ग मिल जावे जिहड़े रब दे प्यारे उह दोनां चों निर्लेप हो जांदे ने क्या स्वर्ग क्या नरक बिचारा संतन दो राधे दोनों का पासे हो जाते ने हम काहू की कान न कड़ते अपने गुर प्रसाद अब तो जाए चढ़े सिंघासन उस अवस्था विच पहुंच जाते ने मिल है सारंग पानी रब नाल मिल जाते ने ते मिलदिया मिलदिया राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी संता मानो दूता डानो एह कुटवारी मेरी दिवस रह तेरे पाओ पलोसो केस चवर कर फेरी ते प्यार विच कहिंदे ने

संत साजन पए सरसे। सुनते पुनीत कहते पवित, बिनवंत नानक गुर चरण लागे। सुनते पुनीत कहते पवित, बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्चे मत पत का राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जीव श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभालदा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शियो रमाण्यो के माण नितान्यो के तान न्योटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु तन तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावे ता आने रास। महाराज जी आप जी दे चरणा अरदास बेनती आप जी दी महान बख्शिश हुई। अमृत वेले आप जी ने अपने तख्तां ते प्रकाशमान होके संगत नूं दर्शन दिदारे बख्श के निहाल कीता। अमृत वेले पावन हजूरी अंदर दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच संपूर्ण आसा की वार दे शब्द कीर्तन होए ने। उपरंत आए दे हुक्मनामे दियां विचारां होईयां छे पौड़ियां आनंद साहिब दे जाप होए। महाराज जी उस समुची सेवा निभाउंदिआं बाणी पढ़दिआं कीर्तन करदिआं विचारां करदिआं आप जी दी सेवा संभाल करदिआं होईयां बेअंत पुन्नां बख्श देणियां जी अगे वात ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बालू तों बख्शिश करना बाणी दा भाव आईयां शब्दां दे हिरदिआं ते वसाउणा आईयां संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी सभना दियां तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां सभना नूं धर्म करो नामदान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशां विदेशां विच रखिआ बख्शिश करनी महाराज जीओ बेअंत संगतां दूर दुराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहीआं हन जाप सरवण करदिआं आप जी दा धन्नवाद करदिआं बेअंत माया गुरु घर वास्ते गुरु घर दे सेवादारा सिंघां वास्ते ऑनलाइन भेटा कीती महाराज जीओ सारी संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी सभना दी माया सफली करनी किरत कमाईआं विच बरकतां पाउणियां श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनियां चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करो महाराज जी सिख पंथ विच एकता प्रेम भावना दी दात बख्शिश करनी जी खालसा पंथ नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी जी आप जी दियां बख्शियां दातां विचों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग हाजरे दर प्रवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी का पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे पावन पवित्र हुक्मनामा बख्श के संगतां नूं कृतार्थ करो अते चल रहे लड़ीवार सहज पाठ करन दी आग्या बख्शिश करो जी सही गुरमुख प्यारे मेरना जिन्हां मिलिया आप जी का

बिरथा जन्म गवाया रहाओ। तब लग प्राणी तिसै सरेवहु, जब लग घट महसासा, जे घट जाए तब पाउ न जासी, हर के चरण निवासा। जिसको

मैं किसी की बोई ऐसा दीन दुखाला हार के लोगा मोको नीत डसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर पह पुकारिया तिन्हो लिया उबारी रहा नौ ढाडी दस मुनसफ धाव है रैयत बसन न देही डोरी पूरी मापे नाही बहु बिस्टाला लेही बहत्तर घर

ऊचे मंदर साल रसोई, एक घरी फुन रहन न होई। एहो तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। रहाओ भाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काड सवेरा। घर की नार कुरह तन लागी, ओ तो भूत भूत कर भागी।

ललित बेड़ा बंध न सकियो बंधन की वेला, पार सरवर जब उछले तब तरणु दहेला, हाथ न लाए कसुंबड़े जाले।

मैं मूरख कहन न जाई, तेरे गुण गावा देह बुझाई, जैसे सच मह रहूं रजाई रहाओ। जो किछ हुआ सब किछ तुझते, तेरी सब असनाई, तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चतुराई, क्या हो कथी कथी।

अकथ कथा कहिए गुर पाई, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाई, बिन गुर करनी क्या कार कमाय, हौ मैं मेट चले गुर शब्द समाय, मानमुख विछुड़े

कहाउ तू दयाल दयापत दाता क्या इह जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझते हुए ऐसा आख वखाणे गुरमुख हुवै सो मुक्त कहियै मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चे आप सुवारे भरम भुलाने से मन मुख कहियै ना उरवार ना पारे जिसनों नदर कर

नानक भाग हुवै जिस मस्तक काल है मार बिदारे। बिलावल महला तीजा अतुल के

माया का रूप सब तिसते होए, जिसनु मेले सो निर्मल होए, जिसनु लाई लगे तिसे आए, सब सच दिखाले ता सच समाए, आपे लिव तात है आपे, आप बुझाए आपे जापे, आपे सतगुर

जत संजम तीर्थ उना जुगा का धर्म है, कल मह कीरत हर नामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है, सोध देखो बेद पुराना। गुरमुख जिनी ते आया हर हर।

ना। कहत सुनत सबे सुख पाव है, मानत पाहे निदाना। बिलावल महला तीजा, गुरमुख प्रीत जिसनु आपे लाए। तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए, मंगल नारी गावह आए। मिल प्रीतम सदा सुख पाए,

अचिंत नाम वसिया मन आई, हो मैं माया शब्द जलाई, दर साचै गुर ते शोभा पाई, जगदीश सेवाओं मैं अवर न काजा, अन दिन आनंद हुवै मन मेरे, अन दिन आनंद हुवै मन मेरे, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ। मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुर ते शब्द बुझाई, जीवन मरण को संसार वेखै।

हर रसना, हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही है, हर किए पतित पवन्ना। ओ ढोवै ढोर हाथ चम चमरे।

करियहु जन नानक दास दासना बिलावल महला चौथा। हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती शरणागत पुरख अजन्मा कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन भज राम नामे रामा गुरमत हर रस पाइए और त्यागो निफल कामा। रहाओ

तिन वड दुख सहमा ओए फिर जोन पवाई है मंद भागी मूड अकर्मा हर जन नाम आधार है तुर पूरब लिखे वड कर्मा गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनम्मा बिलावल महल्ला चौथा हमरा चित लुभत मोहि बिखिया बहु दुर्मत मैल भरा तुमरी सेवा कर ना साकह प्रभु हम क्यों कर मुग्ध तरा मेरे मन जापु नरहर नाम नरहरा जन ऊपर कृपा प्रभु तारी मिल सतगुर पार परा रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभु स्वामी हर देहु मती जस करा तुमरे संग लगे से उदरे जो संग काष्ट लोह तरा साकत नर होची मत मध्यम जिन हर हर सेव न करा ते नर भागहीन दोहचारी कोई जन्म मुए फिर मरा जिनको तुम हर मेलु हो स्वामी ते नाए संतोख गुरसरा दुर्मत मैल गई।

खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेव हो दिन सब रैनी हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुर।

परम सम्मान योग गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो सतगुरां दे दरबार विच बैठ के, घरां विच बैठ के अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो। गुरुदेव जी कृपा करन सभना नूं दरों करो नाम दान, गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजन। पढ़ी सुनी बाणी दा भाव सभना नूं सतगुरु जी प्रदान करन। अगाध बोध बाणी पढ़दियां हुईयां बेअंत बेअंत भुल्लां दी खिमा प्यार सहित फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जिनाते उदी नजर हो जाए ते फिर तेनू कारजा नू दसन दी लोड़ नहीं, तेरे कारजा पीरास हो जाए। उन्हों पता है मेरे बच्चे नू, मेरे सिख सेवादार नू किस किस चीज दी लोड़ है। इस दर विच हमेशा भरोसा भावना बना के आइए, देर हो सकती है अंधेर नहीं। आग लगदे हैं समा भी लग जाता है, गुरु टणका के भी वेखदा वे कड़ा कच्चा है कि पक्का है। जिहड़े कच्चे ने वो फिर दर ही बदलते रहते, गल बनी नहीं हुण उहदे मगर चलीए, उत्थे भी गल नहीं बनी फिर होर किते चलीए। पर गुरु नानक साहिब जी कह रहे ने तू डोली ना, भरोसा अडोलता बना के रखी। इस घर विच अज तक कोई झोली खाली नहीं, हिंदुस्तान ते जदों दुखां दा पहाड़ टुटिया, औरंगजेब कहिंदा है जां ते मुसलमान बन जो जां मौत कबूल कर लो। सवा सवा मन जनेऊ उतार के रोटी खांदा सी। उन्हें सोचिया एक एक नू मुसलमान बनावांगे, बड़ा समा लग जाएगा। फिर कहिंदे हुक्म कीता इन्हां दा गुरु लभो, जिसनू मना लईए फिर उहदे करके सारे आपे मन जाणगे। हुण हिंदू वीरां ने, वड्डे वड्डे ब्राह्मणां ने, पंडतां ने हर किसे अगे फरियाद कीती, पर कोई बाह पकड़न वाला नहीं। फिर पंडित कृपा राम वर्गियां नू सोझी होई वी गुरु नानक दा घर बाकी है, उत्थों कोई झोली खाली नहीं आउंदी। दुख वड्डा सी छोटा नहीं, ते सारे दुखां नू इंज कह लईए, सृष्टि दे सारे दुखां नू गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपने आप ते लै लिया। ते उन्हां पंडतां दी 500 पंडतां दी ही ने वर्ल्ड दी अपने तन दी चादर बना के, धर्म हेत साका जिन किया सीस दिया पर सिर ना दिया। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, किनो बड़ो कलू में साका। वेखो हालांकि धर्म दूजा है पर गुरु गोविंद सिंह जी 8-9 साल दे ने, गुरु तेग बहादुर जी कहंदे ने इन्हां दे धर्म ते दुखां दा संकट है, पहाड़ टुट पिया पर असी कोशिश करांगे रखण दी। महाराज ने रखिया, माण नहीं कीता सी रखांगे असी ये कर देंगे नहीं। मीत करे सोई हम माना, मीत के करतब कुशल समाना। जो निरंकार नू पावे ओदी रजा विच कुर्बानी दे दित्ती चांदनी चौक विच, ते हिंदुस्तान वास्ते खुशियां दी लहरां बहरां बन गईयां। अज हिंदुआं दे मंदरां विच भी आरती गूंजां, लहरां बहरां खुशियां, ये गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी देन है। जिहदे ते टुट जाए ना फिर ओ नहीं वेखदा वी इहदा दुख किन्ना वड्डा है, ओ फिर अपनी जिम्मेवारी लै लैंदा है। सतगुरु मैं तेरे चरणां विच आया, हथ जोड़ के तुहाडी नजर लैण वास्ते आया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਪਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੈ

0: तुमसे चलन भी मात मुझ प्रदान करो परंतु अनाधिकार की मर्यादा में नौ भी आपकी आज्ञा करो क्योंकि जय प्यार में बिना मिले आपकी का नाम पिता नाम नाम चढ़ते गुलाब
1: तेरे पाने सरबत दा भला।

पावन पवित्र घड़ी का इंतजार सी। महाराज की कृपा दे नाल, महाराज की बख्शिश दे नाल कार्ज निर्विघन संपूर्ण होया है। दास जिथ वालों दोनों परिवारों नूं लख लख वधाइया, गुरसिखा मन वधाइया, जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे दोनों परिवार नूं लख लख वधाइया। आओ वधाई दे शब्द गायन करांगे आप सारे रल के कृपालता।

0: दुखी जन मन बना है सबसे दुख न सुख से बड़ा है
1: सुखी हो नहीं खाओ
0: संत का दुखी याद भी चकूटा है संत का दुखी किता का न पूछ है
1: दुखी जो
0: संत का दुखी अंतर से सो था आज जो साथ बिना में तकती लो था संत के दुखी को अवर न रखनहार धन संत पावे काला है उभार संत का दुखी को खाने आ जाए जो पावक इंदन
1: है
0: संत का दुखी धर्म से रहे तो संत का दुखी सब विद्या कहे
1: तो
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दर्घ में रस जाए संत के दुखी की पूजा नया सा संत का दुखी और चले
1: निरसा
0: कितना बेटा कोये नाम जाना सच्चा सोए राखी उस करो नाथ सत्य हो सास अपना खेलिया कर हार से कौन कह विचार
1: राजा
0: उस